ये आकाशवाणी है, एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर, और भक्ति संगीत वंदना का समय रहेगा सुबह 9:20। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजस्थानी काव्य गोष्ठी आप सुनेंगे सुबह 9:30। गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:00, और गाने नए तराने नए फिल्म संगीत सुबह 10:30 पर। युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:00, और कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे शाम 5:30। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:05 पर, और कार्यक्रम माटी के स्वर का समय रहेगा शाम 6:20 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी समय रहेगा शाम 7:00, और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 7:30। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्मी गजलें और कव्वालियां। रात्रि 8:30 पर समय रहेगा गाने नए जमाने के फिल्म संगीत। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर, पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी आज अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हो रही है। भारत का यूएई को निर्यात 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इसके साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की। श्री प्रधान के आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, सीबीएसई के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा की दूसरी बार की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 21 मई तक ये प्रदेश के 90 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। इसके लिए राज्य के करीब 1,300 स्कूलों में 21,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय उड़न दस्तों का गठन किया गया है। वहीं आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं भी कल से शुरू हो गई। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में भी ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 3.25 रुपए और डीजल करीब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करते हुए प्रदेश में ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय किया है।

0: लोग नहीं करेंगे ताकि किसान की बचत हो।
1: राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक सीजी संजीव प्रकाश शर्मा ने भी अपने वाहन के साथ चलने वाली एस्कॉर्ट कार को छोड़ दिया है। इसी तरह निचली अदालतों में कई मजिस्ट्रेट कार पुलिंग कर कोर्ट पहुंच रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई गंगा दशमी से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। प्रदेश भर में ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल इस बारे में अहम बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हर जिले में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का काम मिशन मोड पर किया जाएगा। अभियान के दौरान श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियां, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई, प्रभात फेरियां और जागरूकता रैलियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को जल जीवन मिशन 2.0 के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और प्रसूताओं तथा उनके परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एम्स की टीम भी आज कोटा में इस प्रकरण की जांच करेगी। अंतिम रिपोर्ट मिलने पर ही घटना के सही कारणों तक पहुंचा जा सकेगा।
2: जो भी है, चाहे दवाइयों में है, चाहे साफ सफाई में, जो भी इसका तो कौन मदद करेंगे, गंभीर विषय है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम उस पर करेंगे और जो भी दोषी है उसके अगेंस्ट केस लगाएंगे। तो डेथ हुई है, उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंस में देना चाहता हूँ कि बहुत दुखद घटनाएं हुई और हम सब इसमें हमारे खुद की आंखों में आंसू लगाए।
1: पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना हुआ है। इससे तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। हालांकि गर्मी का असर बरकरार है। कल हनुमानगढ़, फलौदी, बीकानेर, बारा और राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में हल्की बारिश हुई। जयपुर में भीषण गर्मी के बाद शाम को तेज रफ्तार हवाओं और गरज के साथ रुक रुक कर करीब 2-3 घंटे बरसात का दौर चला। कोटपुतली बहरोड में देर शाम चली धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। उधर पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। प्रशासन की ओर से पानी की फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। वहीं श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। चित्तौड़गढ़ और जालौर में रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज शेखावाटी क्षेत्र, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर। पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगलवाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत वंदना।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 0582240168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत वंदना FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजस्थानी काव्य गोष्ठी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी नागौर का निशु आयोजित इन राजस्थानी काव्य गोष्ठी में आप सब सुधी श्रोताओं और घणेमान स्वागत और अभिनंदन। आपने आ बतावता घणो हरक हुए का अपनी आकाशवाणी आज आपकी 90 वर्षारी सुजस यात्रा पूरी करी है। इन बातरी आप सब हेतोड़वा ने घणे मान बधाई। मित्रा, आकाशवाणी री आ 9 दशकीय यात्रा फगत प्रसारण रो इतिहास भरनी है, वरना जीवंत गाथा है भारतीय सांस्कृतिक चेतना री, प्रांतीय संस्कृति रे संरक्षण और संवर्धन री, लोक भाषाओं रे रक्षण री और जन भावनाओं रे प्रगटीकरण री। गुमेज करण जोग बात है कि आजादी रे पहली सु ले आज रे डिजिटल युग ताणी आकाशवाणी गांव ढाणी खेत खलियान सीमा चौकिया सु ले जन जन री संवेदना और आशा अपेक्षा ने एक सूत्र में पिरोवणो जस जोग काम करियो है। लोक भाषा और लोक संस्कृति रे संरक्षण संवर्धन री कड़ी में आज आकाशवाणी केंद्र नागौर सु आप सब काव्य रसिक श्रोताओं सारू ले आया हां मायड़ भाषा राजस्थानी री काव्य गोष्ठी। इन काव्य गोष्ठी में आप 4 कलंकारा री सामयिक सरसर घणमोली कविताओं और रसास्वादन करोला। मैं परिचय कराऊं और सबसे पहले आपा स्वागत करा मायड़ भाषा राजस्थानी रा मोभी सपूत श्री लक्ष्मण दान जी कविया खेण। दूसरा रचनाकार मीठा गीतकार श्री पवन पहाड़िया जी डे। तीसरा राजस्थानी री युवा कवियत्री श्रीमती संतोष कंवर जी शेखावत बरडवा। और चौथो आपरो नाचीज मित्र गजादान चारण शक्तिशुत। आओ आपा कवि कुलरी आराध्या माँ सरस्वती रो आह्वान रे साथे कवि गोष्ठी रो शुभारंभ करा। माँ भगवती रो एक कुंडलियो पढ़ और मैं कवि गोष्ठी रो शुभारंभ करनी चाहूं। आपरी आज्ञा चाहूं के वीण धरण वागेश्वरी सब विद करण सहाय। हे मातेश्वरी माँ भगवती सरस्वती पधारो। के वीण धरण वागेश्वरी सब विद करण सहाय सदबुद दीजे सुरसती उर उगति उपजाय उर उगति उपजाय सरसलय भाव सुझाओ और हंस विवेकी हियो वरद अम्बा बगसाओ। गुण गावण गजराज सुर दीजे असरण सरण हंसा रूढ़ी तम हरण माँ धवलांबर वीणा धरण। माँ सरस्वती ने वंदना करा और सबसे पहली काव्य पाठ सारू मैं घणे मान नूतो देऊं आदर जोग बाईसा संतोष कंवर जी शेखावत ने। वे द्रौपदी रे जीवन ने लेर द्रौपदी चीरहरण ने लेर आपरी एक रचना लेर आपार साथे है। आदर जोग संतोष जी शेखावत बरडवा।
3: केरव बुलवाओ भेजो हो कुटलाई मनड़े माई करया कुंताला झटके आया हा जुवेरा पासा हाथ धरया दरबार सजोड़ो हो जोरा एर सगड़ा आय बिराजे हा कुंताला भेदन जान्यो हो केरव मन बाजा बाजे हा दादा भीसम अर विदुर द्रोण माता गंधारी भी आया भरियोड़ी सबा बडेरा स्यूं धद्राष्ट्रितात मन मुड़काया सत्कर्म धर्म ने भूल गियो सकुणीरो कपटी खेल इशो दुर्योधन सागे दुर्शासन कपट्यारो साचो मेल जिस्यो कपट्यारो साचो मेल जिस्यो पांचू पांडू अब हार गया सिंघासन हाता जावे हो मोनी बन सगड़ा बैठा हा ए धर्म धर्म ने खावे हो मामा हिवड़े में हरसाया दुर्योधन चाव करे मन में दुर्शासन तणियो सागेड़ो हीलोड़ा उठती जू तन में हीलोड़ा उठती जू तन में उठ धर्म राज अब जावे हा जद सकुणी आडो आयो हो बो पलट्यो मगज पांडवारो कृष्णारो दाव लगायो हो कृष्णारो दाव लगायो हो अब दाव लगायो द्रौपदरो गूंथ्यो मामो इक जाड़ो हो सत्कर्म धर्म ने बिसरायो कूणी त्या वालो ख्यालो हो कूणी त्या वालो ख्यालो हो मामा सकुणी रे पासे स्यूं कुंताला पाछा हार गया, मनड़े में राजी कैरवहा, पांडू पंचाली हार गया, पांडू पंचाली हार गया। दुर्योधन उठ्यो झटकारे, दुर्शासन ने बतलाई कियो, उन सभा माय कृष्णेई ने झट ल्यावण रो आदेश दियो। इन्याव न्याव पर भारी हो, अर धर्म हार तो जावे हो, उन ऋतुमति पंचाली ने यूं खींच दुशासन ल्यावे हो, यूं घींच दुशासन ल्यावे हो। माँ भारती चित्कारे ही, भुजरे बड़ने अजमावे ही, बा हाथ जोड़ अरदास करे, दुर्शासन ने समझावे ही, दुर्शासन ने समझावे ही, बा कोटि कष्ट उठावे ही, दुखड़ो मनड़े में ल्याई ही, बा आज ठोकरा मैं रुड़ती, अग्निरे कुंडरी जाई ही, बा दुखड़े स्यू अनजानी ही, सुखरी छाया में पड़ी ओड़ी, काची कंवली सी कूपड़ ही, दुखरे कांटा सू बिंदियोड़ी, दुखरे कांटा सू बिंदियोड़ी। नैना सू नीर झरिया जावे, हिवड़े में पीड़ अपार लिया, बादियो ओलमो पाचिया ने कृष्णे खारा बोल किया, कृष्णे खारा बोल किया। था धरणी ने धू जावणिया, बैरिया रा हाजम राज जखा, इन्याव सहे कू कर अबड़ा, अर्जन रे जेड़े वीर थका, अर्जन रे जेड़े वीर थका। कूकर बांकुरिया बैठा है, खागा रे लाग्यो काट किया, जो धारी भीव बुझावा सू, बो सत्य निसर्ग्यो आज जिया, बो सत्य निसर्ग्यो आज जिया। नारी रो कूकर दाव लियो, क्यों धर्म छोड़ियो धर्म राज, मु धर्म रुखाड़ा मान्या हा, निसर्ग्यो मारो भरम आज। क्यों तंत नाखियो आज भीम, गजरे सिरसा बलवान जखा, क्यों भरी सभा में मुंह बिलखूं, था बाहुबली सा कंत थखा, था बाहुबली से कंत थखा। कुंताला है बलवान इशा, जट धरती ने पलटावे है, क्यों कर हाता ने बांध खड़िया, क्यों मैणा सुनता जावे है, क्यों मैणा सुनता जावे है। मुंह बिलखी जाऊं सभा माए, कुंताला रो कुल लोपे है, था धर्म रुखाड़ा रे बैठ्या, ए धर्म किया पग रोपे है, ए धर्म किया पग रोपे है। पीता माँ क्यों मोनी बनिया, क्यों आज तमासो देख रया, क्यों भरी सभा में अबड़ारो, आचल इन्याई खेच रया, आचल इन्याई खेच रया। ए धर्म गुरु एर तात किया, देख्या जावे इन्या विशो, अब म्हारी लाज बचावण ने, आडो आवे लो न्याव किस्यो, आडो आवे लो न्याव किस्यो। सतपत ने था बिसराई दियो, सगड़ा रो बल बुझियो लागे, पोरस हीणा बन गया पांडू, ले तात पिता मां ने सागे, ले तात पिता मां ने सागे। कुंताड़ा रा सिर नीचा हा, नैना में रीस समाई ही, अर बड़ा बडेरा सगड़ा री, निजर्या धरणी पर छाई ही, निजर्या धरणी पर छाई ही। मोनी बनिया कुंताड़ा हा, सरनाट सभा में छायो हो, अब चीर हरण रो दुर्योधन, अंतिम आदेश सुनायो हो, अंतिम आदेश सुनायो हो। दुर्शासन खेचो आंचल ने, आंख्या मिचगी पंचाली री, अब लाज उतरती जावे ही, उन पांच पांडवा वाली री, उन पांच पांडवा वाली री। द्रुपद सुता कर जोर खड़ी, नारी पर भीड़ पड़ी भारी, अब लाज सांवड़ो सांवरिया, अब हाथ बढ़ाओ गिरधारी, अब हाथ बढ़ाओ गिरधारी। अब तो आओ जगनायक था, बिसराओ मत यूं रीतड़ली, नारी रो लायो दाव अठे, था आई निभाओ प्रीतड़ली, था आई निभाओ प्रीतड़ली। इंदर जद ब्रिज पर कोप्यो हो, था गिरवर नख पर धार लियो, फड़किचरो नाग कालिये रो, ब्रिजनगरी रो उद्धार कियो, ब्रिजनगरी रो उद्धार कियो।
2: बहुत बहुत आभार, आपा सुनया संतोष शेखावत बरडवा ने, द्रौपदी रे उन मंदरी पीड़ा ने, उन खेल ने आपरी इन रसदार कविता सो प्रस्तुत करियो। रामनाथ जी कविया लिखो कि द्रौपदी इतनी दुखी हुई, आपरी कविता ने पुष्ट करता दो कैर में अगले कवेसर ने बुलाऊं। रामनाथ जी लिखे कि उभा भीषम द्रोण, जेठ करण उभा जठे, अरे को हरी बरजे कौन है लाज रूखाड़ा ही लाज ले। तो ये वास्ते उन पीड़ा ने द्रौपदी री पीड़ा ने आप गाई फिर बधाई दूं और आग्रह करूं अगले काव्य पाठ सारु पवन जी पहाड़िया ने के चेला चाकरिया ठाकरिया इल हेन थिर ए भूरसी भाकरिया आखरिया रहसी अमर आखरा अनंत उपासक आदरणीय पवन पहाड़िया जी डे।
4: राम राम साहब, मैं अपने मरुदेश पर जगह केरा की फसल हुआ आपने फोकट में बिना पानी पाया बिना रूखाया भी पर मैं अपने मरुदेश की संपत्ति पर रचना लिखी है। मैं आपके आपके सामने दुआ पेश करूं कि बाटा

अब नवी साल में देख लियो आपने जकी नई साल लागे, नई साल की भी स्वागत के मायने आपने जकी प्रकृति साथ दे रही है, विपर है कि नवी

आदेश है आपको गजादान साहब को एक दूजी कविता और आने दियो। तो आ मारी जगह दूजी कविता है जो मैं आज के हालात पर लिखी है, माँ पर, माँ में कहीं भीतरी है भी पीड़ा पर है। नो

0: खातर से आपस में तनिया मां से आपस में तनिया मां
1: बहुत बहुत आभार आप सुनिया पवन जी पाड़िया डे ने मारे मन री पीड़ा भी सुनाई और राजस्थान री बरकत रो गुणगान करियो आपने प्रति आभार ज्ञापित करूं और अगले काव्य पाठ सारू मैं आमंत्रित करूं डिंगदरा वरिष्ठ रचनाकार राजस्थानी राम ओबी सपूत लक्ष्मणदान जी कविया ने सुघड़ छंद रस सांतरा अलंकार उपमान सरस भाव सिरजे शकव ओ कवियो लक्ष्मण दान सुघड़ छंद रस सांतरा अलंकार उपमान आदरजो लक्ष्मणदान जी कवि
2: गीत काछो बरसाला रो तपत रवि सकल आषाढ़ो अबे श्रावण मास आयो घणो घन छायो गिगन भल जगत छायो छोल छायो कमायो किरसाण हल परे हाथा शब्द साता गीत पाथा गावता रत दिवत राता बीज बाता गिरी गाता माण लगन इक जल झड़ी लागी भुवन विपदा दूर भागी अनुरागी मना उच्छब खुश नाई खागी दला दागी बाग जागी ब्याद गण गिगन गाजे शोर साजे नित मोर छाजे नजत रिक संत राजे वप विराजे मना भाजे माद हो दशर ले वे हिलोला छवे नदियां फैन छोला डरा नद डोला डकत टाबरा टोला रमे रोला प्रभा पोला पूर जग जुगत जाने मौज माने दंपति ठाणे दिपत प्रीति प्रमाणे ताने नव उफाणे नूर बाबयो आकाश बोले डेड रारट शब्द डोले हियो छोले बिरहणी कली फूल ओले झुकत झोले ऋषिक खोले रोक कोयला कृति परग पीति मौन नीति बोहणी चुगाऊ चीति जोर जीति परस भीति पोक दूजो गीत गीत ललित मुकुट बरसाला पावस रुत माची प्रबल आची बात अपार तो हाची भी हरियालिया नाची कुशिया नार पावस ऋतु माची प्रबल आची बात अपार हाची भी हरियालिया नाची खुशिया नार तो नाचे खुश नारम हरक अपारम तीज तिमारम पीव घरे सोला शिंगारम पटनव धारम घर घर नारम कोड करे दंपत दीदारम संपत सारम सुख आधारम चित हरे बिरहणी विचारम बारम बारम सांझ सवारम अंक भरे जिय सांझ सवारे अंक भरे अंक भरे दुख में अवश्य बिरहण करे बिलाप तो बने बाप दलो भेट बपू तन पर ईश्वरो ताप तो तन पर घन तापम शब्द शरापम के हिब कापम जीव दहे दामन दित लागे शेरा सागे लप गल लागे कैम सहू छाती घन छोले डेडर डोले पिप बोले बाबयो केकी की लोलम नदियां छोलम होद हिलोलम ले रही हो जी होद हिलोलम ले रही हो ले रही हो जस लोक मैर श्रावण आनंद सोय चार हरित पशुवा चरण जीवन पालर जोय तो पालर जो जोवे सुरबी सोवे महिमा मोहे सै धारा टोगड़िया टांडे बंटो हांडे मोजा मांडे सिंझारा खीचड़ घी खासो दूधा चासो वापर वासो हरकावे नींदाले नामी खेतन खामी अंतर जामी गुण गावे जी अंतर जामी गुण गावे अब गीत चित इलोले महाराणा प्रताप रो
1: स्वागत
2: सुतन उदय हिंदवाण सूरज हिंदवा हिहार विख्यात हुए परुताप बसुदा धर्म क्षत्रि धार तो बलिहार जी बलिहार है तव तो हिंद रो बलिहार आदीन राजा सबे अकबर बंद हुईगा बोल स्वाधीनता प्रताप से भी खिमे हिरदो खोल तो अणमोल जी अणमोल अधिपा माय ने अणमोल रिजक भैसु नपत रीज खीज पड़गी खाड हाँ हाँ मिले अकबर हताई जोधवा घन जाड तो दी गाड जी दी गाड गरिमा हिंदरी दी गाड मस्ती लहे सब बैठ मेला गर्भ करत गुलाम भर गाय भरमायेगा अकबर भरोसे कर विया बेकाम तो अठ जाम जी अठ जाम आलस छावियो अठ जाम सजतनी सेना लगी संभण अकबरी आदेश कर कुंत दल मेवाड़ कानी प्रबल राग प्रवेश तो घनशेष जी घनशेष शैलन लागवी घनशेष भिड़ गयो राण प्रताप भालो अहर छायो अंध मच गई खलबल सैन मुगला मान सेवा मंद तो पाबंद जी पाबंद पूरी हार रे पाबंद केकान चेतक तनी कीरत जंग साती जोर रिछा घणी प्रताप राखी ईशो अश्वन ओर तो

0: तपतोर जी तपतो तारी तुरंगा तपतोर बरिया भमिया गिरी प्रताप भागी रूप बागी रंग स्वाधीनता हित कष्ट शिया देख दुश्मन दंग तो तल तंग जी तल तंग तुर कांकी दिया तल तंग सोता जिगर सहजा सुमनरी सुवे धरती सहज घासरी रोटी खाई गिर में तो ही बड़ी हो तेज तो गुमेज जी गुमेज गौरव हिंद रो गुमेज रैसी अमर प्रताप राणा सूरवाम सिरमोड़ स्वाधीनता प्रताप साची चाव इस जतोड़ तो बेजोड़ जी बेजोड़ वीरां छाप दी बेजोड़
1: बहुत बहुत आभार आप सुनिया लक्ष्मण जी कविया खेण ने डिंगलरा वे छंद न्यारी न्यारी जात्रा डिंगलरा अलग अलग छंद महाराणा प्रताप ने आप याद करियो राजस्थान की प्रकृति ने याद करी देवी देवताओं ने याद करया आपरे प्रति आभार और अबे इन कवि गोष्ठी रे अंतिम कड़ी रे रूप में आपरो नाचीज मित्र गजादान आपकी आज्ञा हो तो मैं एक
0: स्वागत है
1: मारी एक कविता है मजदूर और रिपीट अबार अपा एक मई ने मजदूर दिवस मनायो उन्ने ले मजदूरा री पीड़ा नाम से एक कविता है आप सुनाओ के मजदूरा री पीड़ पिछाने इसड़ी आंख बनी ही कोनी मजदूरा री पीड़ पिछाने इसड़ी आंख बनी ही कोनी और इन पीड़ा ने तोल दिखा दे इसड़ी ताक तनी ही कोनी मजबूरी मां मजदूरा री मैं एक तो निवेदना करूं कि कविता में गजादान नहीं बोल रहे मजदूर बोले वास्ते मजदूर री बात है कोई ने दोरी लागे तो बाप मजदूरों बात कर जो के मजबूरी मां मजदूरारी महामारी शू मोटी है और मारे चीज असंभव जग में राम नहीं वा रोटी है मजबूरी मां मजदूरारी महामारी शू मोटी है और मारे चीज असंभव जग में राम नहीं वा रोटी है अखबार आ रे आलेखा में आ मजबूरी छाई देखो और कवि यारी कलमा भी इनने गीता गजला गाई देखो जनवादी कंठा सु इनने आरत सुर आला भी लोका पुरस्कार पावन रे सीगे पोथ्या माही छापी लोगा पुरस्कार पावन रे सीगे पोथ्या माही छापी लोगा भांत भांतरा प्रश्न उठाया देय दलीला भात भांतरी और करी नुमाइश मारी लोगा नड़ी नड़ी और आंत आंतरी सगड़ा सारू अन्न उपावा सगड़ा सारू अन्न उपावा उनरे घर में तोड़ो कीकर और जको जगतरा फोड़ा मेटे उनरे हरदम फोड़ो की कर जको जगतरा फोड़ा मेटे उनरे हरदम फोड़ो की कर प्रश्नासु कद पेट भरीजे कद ओ जीव सोराई पावे रोजगार री बात बनाई आ होटा सरसाई आवे रोजगार दियो एक मई री देय बधाई घावा लून लगाओ मतना एक मई री देय बधाई घावा लून लगाओ मतना और सांसारी दुखती सिगड़ी ने दया हवा सिलगाओ मतना मैं थारी इज्जतरा रक्षक मजदूर कवे सगड़ा री इज्जत मजदूर रखे के मैं थारी इज्जतरा रक्षक मेहनत कर कर मैल बनावा और मैं ही चुंदड़ी और पोमचा रंग रंगीला रंग चढ़ावा मैं ही ढोल घुरावा थारे शहनाई यर सरगम ल्यावा घूमर घाल दिखावा थाने राग रागण्या गाय सुनावा छोटे शु मोटो हर टाणु मजदूर सुधारे छोटे शु मोटो हर टाणु सदो सदा सुधारा साचे मन शु मालक मारा खरी मजूरी दे दीजे बस आछे मनसु और की नहीं चाह छोटे सु मोटो हर टाणु सदा सुधारा साचे मनसु मालक मारा खरी मजूरी दे दीजे बस आछे मनसु खुददारी री खरी कमाई खावणिया ने जीवन दो थे खुददारी री खरी कमाई खावणिया ने जीवन दो थे रहम अमी ने अलगी राखो पे हला हल पीवन दो थे फाटोड़े कपड़ा री फोटू खींचण सु अब करो सबूरी फाटोड़े कपड़ा री फोटू खींचण सु अब करो सबूरी आथम तय रवीरा अनुरागया मत बेचो मारी मजबूरी मजदूर कवि समय है मारे मारे इससे एक कविता और जीत रो मंत्र है आज युवा पीढ़ी वास्ते जीत वास्ते काई करनो है के जीत सारू है जरूरी लक्ष्य रो लेखो सखा दाव पासा दुश्मनारा ठीक सर देखो सखा पोच अपनो सोच पासो सोच कर सच भागणो और वक्त जत विपरीत वे तद फूंक कर पद राखणो विपरीत वक्त हुए तो फूंक फूंक कर पद राखणो के मोरचो मजबूत झालो कूंत दुश्मनरी करो और ताड़ सावल चाल ताकत ध्यान कर धाओ करो खेत सुनू हो भलाई चेत कर फल चाखड़ो और वक्त जत विपरीत वे तद फूंक कर पद राखड़ो और प्रबल वैगर शत्रु पकतो जंग प्रतख जान दे प्रत्यक्ष युद्ध री आवश्यकता नहीं है शिवाजी और महाराणा प्रताप भी अप्रत्यक्ष युद्ध लियो छापा मार पद्धति ली वास्ते निवेदन करूं के प्रबल वेगर शत्रु पग तो जंग पर तक जान दे और दाट कर रख रीश दिल में उचित अवसर आण दे। दाव मिलिया साव आसी हाव पास।

0: चौगुणों और वक्त जत विपरीत वे तद फूंक कर पद राखणो
1: राखण।
0: और प्रतिकूलता अनुकूलता में आत रो पल ए करो है सुनिश्चित टेम आणु एक दिन प्रत्ये करो तनिकन करणी हाय तो बा ना निशाशान हाकणु और वक्त जत विपरीत वे तद फूंक कर पद राखणु और
1: बहुत
0: बोल ओछो बोलने सु मोल खुद रोई घटे। लड़ाई
1: बढ़िया,
0: करता भी बोल ओछो नहीं बोलनो।
1: बहुत बढ़िया,
0: बोल ओछो बोलने सु मोल खुद रोई घटे और तोल बिन बोले जकारे बोल रो काई बटे
1: वाह क्या
0: दर्द दिल
1: बात,
0: रो दुश्मना ने अंत तक नहीं आखणु वक्त जद विपरीत वे तो फूंक कर पद राखणु। और अंतिम बंद है के साख ने सब सु घणेरी हाण स्वार्थ सु हुए
1: बहुत
0: स्वार्थ
1: बढ़िया,
0: सु हाण हुए साख ने सब सु घणेरी हाण स्वार्थ सु हुए
1: सुन
0: साख मिटता मानवी वो मौत सु पहली मुवे
1: गए
0: राखणो नित राम माथे और राखणो मिनखापणु वक्त जद विपरीत वे तद फूंक कर पद राखणु। आदरणीय पाड़िया साहब सु मैं आग्रह करूं एक एक रचना छोटी आप सुनाओ।
1: अबार आपके सामने कविया साहब महाराणा प्रताप रो विरुद्ध प्रस्तुत करियो। मैं महाराणा प्रताप ने खून चपायो भामाशाह, भामाशाह की मैं आपके सामने भामाशाह की उपलब्धि रखूं।
0: स्वागत
1: लिया निजर करियो से भामाशाह, लिया निजर करियो से भामाशाह, वो माल मतो धनिया थारो जे मूछ आपरी वे नीची तो बिरसा जीणो है मारो।
0: वाह
1: या निजर करियो से भामाशाह, वो माल मतो मणिया था धनिया थारो, या निजर करियो से भामाशाह, वो माल मतो धनिया थारो, जे मूछ आपरी वे नीची तो बिरसा जीणो है मारो। सेंठारियो निर्भय टूट पड़ो, अकबर ने अवश्य थकाणो है, हिंदुआ सूरज हो अब आप धनिया, वो अमर नाम रखवाणो है। पाग सदे जिनरी ऊंची व कुण नीची करवा सके है, किनरी माँ अजमो खायो जो अंट संटा बात बके है। मौत गादड़ा री आवे जद गांव बिछाड़े आ जावे, बालारी अणिया चेतगरी ढाला चेतगरी चाला ढाला कद बो से पावे। अकबर आ जाने ही कोनी मैं किण ने आय जगायो हूँ, मैं हाथा मारे रपट तेल लांपो खुद आय लगायो हूँ। दस दस अकबर ही आ जावे तो पड़िया अठे बोबावेला, हल्दी घाटी री पुण्य धरा दुश्मनो रगत पसावेला। मैं सगड़ा साते हां धनिया, हिंदू मुस्लिम री बात कठे, बामण बाणिया भील रावली जात्या मरने त्यार अठे। सुपनो वीरो नी पूर्ण जा, कुण कहवे आपा थोड़ा हां, कुण बांध सके औकात कटे से अश्वमेघरा घोड़ा हां। नुगरा जितराई आवेला बे पाछा जानी पावेला, हल्दी घाटी रगता प्यासी सगड़ा इन माय समावेला। बाड़ारा टट्टू कद भाजे, बाड़ारा टट्टू कद भाजे, निज आन बाण मरना आगे, जे एक लिंगरी बोल परा वो वीर वीर लाव लश्कर सागे। थे आज हिंदुआ सुरजी हो जुग जुग आ पदवी बाजेली, जद जद इस सामी झाकेलो अकबर री मूछा लाजेली। बख्तर बांधो बालो जालो, मेवाड़ी मान बचाणो है, श्री नाथ साई और करसी न्यारो इतिहास रचाणो है। महाराणा मूछ मरोड़ कियो वाह वारे नर लगदाद थने, मेवाड़ी मिंदखा पर होयो है आज घणो अपमान मने। जिणरी वे प्रजा था जड़ी वो राजा की कर थाग सके, लाखा वो दुश्मन री नफरी वो रण मा नीचा नाग सके। मैं मिट जाऊं तो गम कोनी, पण लाज नहीं पड़वा ताज नहीं पड़वा दूला, अकबर री सगड़ी सेना ने हल्दी घाटी गड़वा दूला। इतिहास माई जद जदी महाराणा नाम लिखी जेला, तो तद्दी उड़े सागे ही भामाशाह नाम लिखी जेला। जे एक लिंगरी मिल बोला, मेवाड़ धरा आजाद रहे, झुकणो नहीं जाना झुकवाशा आ महाराणा प्रताप कहे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पवन जी पाड़िया ने आप सुनिया। इनके साथ इनका वे गोष्ठी रो आप समापन करा। आकाशवाणी परिवार रो आभार, आप सब सुधी श्रोताओं रो आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजस्थानी काव्य गोष्ठी FM एंड 103.7 पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून कर रखा है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत।

आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का, गीतकार जावेद अख्तर, फिल्म मशाल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम का अगला गीत बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में, बोल इंदिवर के आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म तोहफा।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज, संगीत बप्पी लहरी का, गीतकार इंदिवर, फिल्म हिम्मत वाला।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में संगीतकार डिबरमन का, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, फिल्म पड़ोशन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत शंकर जयकिशन का, गीतकार विश्वेश्वर शर्मा, फिल्म दुनियादारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत बाबूमान और साथियों की आवाज में, गीत और संगीत बाबूमान का फिल्म हजार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत देव नेगी और शिप्रा गोयल की आवाज में, संगीत जस्सी का कात्याल का, गीतकार कुमार, फिल्म हीरो।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए फिल्म संगीत FM एंड 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: युववाणी

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा। मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुसैर अल जाफरी के ये कलाम आप सुन रहे थे। अशोक खोसला की आवाज में कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा यह कलाम आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जगजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

कहा तिंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे इस फिल्म इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

गहरा गहरा नथु खेरा इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाई गई क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल कवाली पॉप गीत और लोकगीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग दरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
0: रंग

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते हैं एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की

0: जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चे से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्चे की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत चुने गए हैं जिनमें पारिवारिक रिश्तों की भी बातें हैं और परिवार का आपसी संगठन, आपसी प्रेम भी दर्शाया गया है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

बिल्कुल, कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी में आज सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्राणी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

किशोर कुमार की आवाज में ढोंगी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुनवा रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो हैं ही, साथ ही पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं। साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं, महबूब के बोल, AR रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30

20 मिनट से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। विविध भारती पर इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

जुबो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एस नो मचा के किट पिट का।

घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा, ओ मामा।

सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती। अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये।

0: ये दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे, सच भाई हुए हैं।

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात हों।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम की आवाज, राजशेखर के बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इस गीत के साथ ही यादों के महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत

इस गीत के साथ ही यादों के महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज, आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं, तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

0: तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते।

यूपी नेयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी।

राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं, आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना? अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक भरा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपको कॉल लगा है?
1: जी जी जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो 3 हजार बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में

0: लेवल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ होते हैं।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे। तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं। जी
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशिया जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान जी और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही है?
1: जी मेरा नाम वर्षा धगट है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं।
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है।
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी, वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और सच
1: ये हर
0: मुझ?
1: महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
0: जी, बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउसवाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम चोर मूवी का तुझे संग प्रीत लगाई करें।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो चलिए, धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सहेली बात कर रही है?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी। मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी। मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ,
0: क्या बात है, बहुत
1: अपने लिए
0: अच्छी
1: समय
0: बात।
1: निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को
1: जी
0: हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं
1: जी
0: आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, उन्हीं
0: जी
1: के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी
1: बहुत महत्व है सभी के लिए। जी
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना।
1: जी
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना।
1: जी जी बहुत
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे। हेलो सहेली, सखी सहेली, बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है,
1: जी
0: तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी।
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से,
0: शिरपुर से फोन लगाए।
1: शिरपुर जैन।
0: जी,
1: हाँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं चलाती
0: मेस चलाती हैं, क्या बात है, बहुत
1: हाँ,
0: अच्छी बात है।
1: हाँ,
0: ये तो
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके।
1: हाँ, खुशी मिलती। खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाए बोलते, कभी कम ज्यादा हो जाता।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ, खाने को तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत से फल मिलता, ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। और रेडियो सुनती हैं आप? कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश,
0: हेलो फरमाइश।
1: गाने सुनते हो तो रहता रेडियो है दिन
0: दिन भर रेडियो चालू
1: भर।
0: रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: राजबाई, राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: हाँ, गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सचमुच यानी परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
1: अच्छा लगे, देवर है, देवरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनती हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती है आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत से आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती है। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए।
1: हाँ, लक्ष्मी विलास भोले,
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगा, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम सिंपल।
0: घर का काम करती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती हैं कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही
1: हाँ
0: जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर
1: हाँ
0: साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना,
1: हाँ
0: सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों
1: हाँ
0: को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन
1: हाँ
0: है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप? कभी खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए, जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही दिन में बच्चों का करते करते टाइम हो जाता
0: टाइम निकालना जरूरी
1: है। खेत
0: है।
1: में, खेत है हमारा, खेत में जाना पड़ता।
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बता

0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद हाटुई से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउसवाइफ हैं और रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर
1: हाँ।
0: घर में भी रहती हैं।

0: जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हाँ, हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं
0: क्या बात है ना, आप ऑलराउंडर
1: मिशन
0: हैं,
1: से।
0: है ना?
1: हाँ, हम अकेले सब सिमट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी, कि
1: हाँ, कही
0: खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये 1 घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
1: हाँ करते हैं, 1 घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं
0: और उसमें आपको खुशी
1: और
0: मिलती
1: जब
0: है?
1: खुशी मिलते हैं। हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना, तो परिवार भी
1: हाँ
0: खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ
1: हाँ
0: जीवन
1: हाँ
0: जीते हैं।
1: हाँ जी
0: तो बस खुश रहिए,
1: हाँ
0: मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और
1: हाँ
0: आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी।
0: जी, और आपने पसंद कर,
1: 2 महीना से छटपटाया रहे थे। हाँ जी, कब 2 महीना पूरा होगा।
0: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: सत्यम शिवम सुंदरम
1: जसमती मैया तेरे बोले नंदलाला।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए
1: हाँ,
0: अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, ताज तालाब है, महाबलेश्वर है
0: जी, सातारा घूमने
1: जी,
0: लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है, नटराज
0: जी।
1: मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए, कभी शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी, हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया है।
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया, मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ।
0: क्या
1: 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत
1: मैं
0: अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और
1: जी
0: आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के
1: जी
0: लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी, 57।
0: अच्छा।
1: मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ,
0: क्या बात है।
1: साड़ी सेंटर में। हाँ, सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और
1: हाँ
0: स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: और मेरा यही

0: कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल सोया है, मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
1: जी।
0: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
1: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं हाँ, प्यारे प्यारे गीत सुन
0: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकिया का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
1: क्या बात है,
0: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
1: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना।
0: जरूरी है, बराबर है
1: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
0: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
1: बहुत प्यारा गीत आपने चुना, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
0: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का

ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002. दूसरा नंबर है 2867 0288, 2867 0288। और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग

0: इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाया।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 01582401168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
0: सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं, इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे, आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। फिर तो ठीक है, तिहार से ज्यादा का जरूरी है, सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है, उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है, और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत

तो मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्या आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने

कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था, आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं।

नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो। मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती। अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है। वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर, उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका

वो बात सहेज रही थी, शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका खरीदनी और पहननी हैं जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।